0: सुनिए, इन्हें जानते हैं आप? फादर पीटर दयाल।
1: वो रहे सामने।
2: माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर दैट मिस्टर हैरी प्रसाद इज एन इनोसेंट मैन।
3: वेल डन आरव, हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से कैन इजीली पुट अ स्टे ऑन अ सेंटेंस।
4: वो बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। ही विल बी अ फ्री मैन सून आरव।
3: जी सेंड इट मी राइट अवे।
0: जी।
2: द एंटायर विलेज विल बेयर विटनेस टू दिस।
5: आरव, सेंड इट। हां

0: आई जस्ट डोंट गेट यू आरव. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी. फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा. मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती. हमें मिलना है, हम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे.
0: आई डोंट गेट यू मैन.
1: अपूर्वा, अपूर्वा गाड़ी रोक.
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप पे का प्लीज.
0: व्हाट हैपेंड?
1: खुशबू,